0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है।

इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो नीरोग। करो योग, रहो नीरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ

0: योग का साथ न्यारा योग फॉर हेल्दी एजिंग ये भरोसा हम सबका प्यारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं योग को जीवन का हिस्सा बनाएं एक दिन नहीं हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है
3: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे सरकार ने तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे
4: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है
4: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है
3: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है
5: प्रिय मित्र नरेंद्र मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा
6: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है महेश चोपड़े आकाशवाणी समाचार पेरिस

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुणे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय

0: नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची, वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कदम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. यूएस

0: ください。
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
3: Reva Diamonds from the house of PNG and Sons प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर
4: असली डायमंड की असली चमक आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट
3: आज ही विजिट कीजिए PN गाडगिल शोरूम रचना संसद प्रभा देवी सृष्टि प्राइम गोखले रोड ठाणे फड़के रोड डोंबिवली और बदलापुर
4: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी शाइन नेचुरली
5: नमस्कार दोस्तों सुप्रभात आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपने ट्यून इन किया है 107.1 FM

आज के सितारे सेगमेंट में मैं हूं आपका मनमित आज अमित, क्योंकि आज आप सभी के संग बना रहूंगा ठीक 11 बजे तक। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आप जानते हैं। इफ यू डोंट नो देन प्लीज डू सेव इट इन योर फोन एंड डू मैसेज अस और हमें बताइए कि यार आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है, और साथ ही साथ बने रहना एफएम रेनबो पर, क्योंकि आरजे अमित अक्सर कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे। अच्छा, बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गीत।

नमस्कार मुंबई, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित के संग मस्त मुंबई ये प्रोग्राम। और आज मस्त मुंबई में हम बात करेंगे कुछ सदाबहार गानों की और साथ ही साथ कुछ ऐसे बातों की जो बातें हम सभी को बतलाएगी कि यार आपने ये ट्यूनिंग करके कितना जबरदस्त फायदा किया है आपका, है ना। पेडल मारती जिंदगी को आप ब्रेक लगाइए और ट्यूनिंग कीजिए एफएम रेनबो। आपके साथ हाजिर है आपका दोस्त और होस्ट जो लेकर आया है आपका पसंदीदा शो। दोस्तों देखो, मुंबई और सिनेमा का रिश्ता जो है ना चोली दामन का है। आज हम टाइम मशीन में बैठकर चलेंगे सीधे थिएटर्स की उन जादुई दुनिया में जहां दोपहर के ठीक 12 या 3 बजे बजती थी तीसरी घंटी और शुरू होता था मैटिनी शो। तो अपनी पॉपकॉर्न की बकेट संभालिए क्योंकि आज का ये फिल्म सफर बेहद कड़क होने वाला है ना, जहां आपके कानों पर गूंजेंगे कुछ ऐसे सदाबहार गाने

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

सुबह का 9 बज चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मास मुंबई। ऐसे देखने जाए तो मुंबईकर्स, अब आपकी जो बारी है ना, उसमें आपको भी कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देनी है। आप कहेंगे क्या करना है, याद कीजिए ना वो दौर जब शुक्रवार की सुबह से मुंबई के मराठा मंदिर, रिगल या कस्तूरबा टॉकीज के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जाती थी। ब्लैक में टिकट खरीदने का वो थ्रिल था और फिल्म की पहली रिलीज का वो पहला शो। लोग तो अपनी फैक्ट्रियों, दफ्तरों या कॉलेज से बंक

मारकर सिर्फ इसलिए भागते थे ताकि पहली बार स्क्रीन पर अपने पसंदीदा सुपरस्टार को देख सके, है ना? आपने भी वो पल जरूर जिया होगा। चलिए उसी सुनहरे दौर को और उन यादों को ताजा करते हैं इस एवरग्रीन और ब्लॉकबस्टर गाने के साथ।

आज बड़ी खुशी की बात है कि एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। दत्तात्रेय आदत, प्रमोद चंचोलकर, दीपाली शिरोडकर, विजेंद्र कटोल और हमारे संग एक और नाम जुड़ चुका है जो कि अपना नाम बता रहे हैं, सुनील गायकवाड़ भाऊ, रजनीकांत पाटिल, शुभदास जी, पंकज मोहोड और वासुदेवन जी हैं बदलापुर से और राकेश माथुर जी हैं, महेश भाटकर जी, महेश बुहारा, फिरोज सिगानपुरिया, प्रदीप अनंत कृष्णन, जय श्री गोखले, हरिश्चंद्र माछरेकर, सुभाष चौहान, सुजाता पाटनकर और इन सभी के साथ राम प्रजापति भी जुड़ चुके हैं। साथ ही राहुल प्रकाश जी यूएसए से हमारा शो सुन रहे हैं, आपका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। 9:10 हो चुके हैं, मस्त मुंबई में और कई सदाबहार गीतों की बात हम करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी के लिए ये एक काफ़ी सुनहरा ट्रैक मैंने चूज किया है जो कि आपके होंठों पर ज़रूर हंसी लाएगा। सुनते रहना एफएम रेनबो, आपका मनमीत आरजे अमित के संग 107.1 एफएम रेनबो पर।

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: Reva Diamonds from the house of PNG and Sons प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर
3: असली डायमंड की असली चमक आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट
2: आज ही विजिट कीजिए PN गाडगिल शोरूम रचना संसद प्रभा देवी सृष्टि प्राइम गोखले रोड ठाणे फड़के रोड डोंबिवली और बदलापुर
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी शाइन नेचुरली

कितनी खुशी की बात होती है ना। हम गाने लगाते हैं, गाने सुनाते हैं, गानों के साथ साथ कुछ लोग ऐसे सुनते हैं कि यार, वो कहते हैं कि यार इतने जबरदस्त गानों के साथ ये माहौल बहुत बहुत रंगीन होने लगा है। चंद्रशेखर भाटोड़ेकर अंधेरी मुंबई से हमें सुन रहे हैं, सुहास और सविता पवार जी पुणे से सुन रहे हैं, और रोहा से मंगेश जोशी जी भी हमें मैसेज कर रहे हैं, राजकुमार कुमार जी सुलह जबरगी से, और माधव फड़ माधगांव कल्याण से शेर राउत जी हैं, और मिलेश गजानन राउत हैं, उनकी पूरी फैमिली है, सुरेश काशीनाथ पाटिल वैश्वी ज्योत अविनाश कड़ू वाधवन से हैं, विक्रम आठवले जी हैं, सभी का स्वागत है। देखो भाई, मैं तो एक बात मानता हूँ कि चाहे आप जहाँ कहीं भी जाओ, आपको इस बात का पता लग जाए कि यार कहीं ना कहीं हमने भी कोई ना कोई फिल्म देखी होगी ना, पहली बार उस फिल्म के लिए ब्लैक में टिकट खरीदा होगा, या फिर टिकट निकालने के लिए वो पल हमने कतार में कुछ

गवाया होगा, है ना, बिताया होगा। तो आप सभी को अगर ऐसा कोई पल याद आ रहा हो तो जरूर हमसे साझा कीजिए। मुझे तुरंत बताइए कि आपने अपनी जिंदगी का पहला मैटिनी शो कौन सा देखा था। क्या वो कोई कॉलेज बंक करके देखी गई फिल्म थी, या फिर पूरे परिवार के साथ संडे की दोपहर का मजा था। आपकी उन खट्टी मिठी फिल्मी यादों को हम शेयर करेंगे ऑन एयर आपके नाम के साथ और आपकी यादों के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए हमारी प्लेलिस्ट का एक और बेहद रोमांटिक गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

लोग बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने उनकी जिंदगी का सबसे पहला मैटिनी शो देखा है। अब देखिए इस सफर में कुछ लोग कहते हैं कि हमने हेरा फेरी मूवी कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर देखी थी, श्रेय राउत जी का कहना है। महेश बोहरा जी कहते हैं राजस्थान से कि स्कूल कॉलेज से तो बंक नहीं मारा हमने, लेकिन नई नई शादी हो रखी थी हमारी और उस समय घर से बंक मारकर पत्नी के साथ, अच्छा घर से बंक मारकर पत्नी के साथ कभी खुशी कभी गम और कहो ना प्यार जैसी फिल्मों का पहला शो हमने देखा है। हालांकि फिल्में पहली बार रिलीज हुई थी और पहला ही शो था तो भीड़ भी ज़्यादा थी और पत्नी को भी टिकट लेना पड़ा और ये सब यादें उन्हें याद दिलाती हैं महेश जी को। और पंकज मोहर जी भी बताते हैं कि उन्होंने पहली फिल्म देखने के लिए स्कूल से छुट्टी लेकर पिताजी के साथ मराठी फिल्म देखी थी, माहिरची साड़ी। क्या बात है, स्कूल से टीचर मैडम जी से जब छुट्टी मांगी फिल्म देखने के लिए तो टीचर भी थोड़ी हंस पड़ी थी। पता है उस जमाने में ऐसी कई सारी फिल्में हिट हुआ करती थी ना, तो स्कूल के टीचर भी बड़े खुश हुआ करते थे, अच्छा फिल्म देखने जा रहे हो, चलो जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं। फिरोज सिगानपुरिया जी का कहना है कि फिल्म संगम का वो नज़ारा मुझे आज भी याद आता है, जब वो ट्रायंगुलर लव स्टोरी और साथ ही साथ उसी फिल्म की सभी यादें, राज कपूर और दिलीप कुमार की एक्टिंग, राजेंद्र कुमार की एक्टिंग के साथ इतनी ज़बरदस्त सजी थी कि वो फिल्म आज भी हर किसी के जुबान पर कायम है। हम चाहते हैं उसी फिल्म का एक गाना आप सभी को सुनाएं आपकी बार और फिर बताएं कई सारे अन्य हमारे श्रोताओं की चाहतें। अगर आप भी आपने देखा हुआ सबसे पहला मैटिनी शो और उसकी यादें शेयर करना चाहते हैं तो 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें, अपना नाम और आपकी यादें जरूर लिखें और बने रहे आप कमनमित अर्जमित के संग एफएम रेनबो पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

देखिए देखते देखते 9:31 हो चुके हैं। मैं हूं आपका मनमीत आरजावी जो कि आज आप सभी से बातें कर रहा हूं। और बताएं, कई सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गए फिल्में रिलीज होने के बाद। हमें पता ही नहीं था यार आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। एक फिल्म 30 सालों तक चल सकती है, ये किसने सोचा था। DDLJ का और मराठा मंदिर का वो रिश्ता आज भी मुंबई की हवाओं में तैरता है। कल्ट फिल्म है ये तो हम जरूर कह सकते हैं। मगर सुहास जी हमें कल्याण से कॉल करते हैं और बताते हैं, भाई हमने तो एक ही फिल्म देखी, वही हमारी पहली और आखिरी फिल्म ठहरी। हमने कहा उसके बाद फिल्म नहीं देखी। बोले नहीं, कैसे देख पाते, पकड़े जो गए। उन्होंने देखी थी एक ऐसी फिल्म जो फिल्म हम सभी को काफी हंसा गई, काफी एंटरटेन करा गई, और गानों के साथ साथ आज भी उस फिल्म की याद हम सभी के दिलो दिमाग में कायम है। आइए, सुहास जी ने देखी हुई फिल्म कौन सी है ये गाना सुन के हमें बताइए।

कई लोगों ने सही जवाब दिया है, ये फिल्म है पड़ोसन। प्रदीप अनंत कृष्णन हो, प्रणव शिंदे जी हो, महेश बोहरा जी हो, दीपाली शिरोडकर, प्रमोद चिंचोलकर और पंकज मोहड़िन, सभी ने सही जवाब दिया है। सिर्फ किसी का कहना यह है, भाई साहब आपने पहली फिल्म पड़ोसन देखी, यहाँ तक तो बात ठीक लगती है, मगर वो आखिरी क्यों हो गई, आप पकड़े गए। भाई फिल्म देखने के बाद कोई मना तो नहीं करेगा, मगर शायद आपने आपकी पड़ोसन को देखा होगा और तब आप पकड़े गए होंगे, ऐसा कई हमारे श्रोताओं का कहना है। मजाकिया अंदाज में कई सारे लोग कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं। इंदौर से हमें अजय साखरे जी मैसेज करते हैं और कहते हैं कि स्कूल के दोस्तों के साथ फिल्म देखने का मजा कुछ और ही होता है। अमिताभ बच्चन की कस्में वादे हमने 1978 में देखी थी स्कूल के 15 दोस्तों के साथ। मुझे भी याद आता है स्कूल के जब दिन होते थे ना, तो दोस्तों आपको पता है स्कूल में इतने पैसे हमारे पास होते नहीं थे और इस जमाने में सिंगल स्क्रीन थिएटर्स

करती थी तो फिल्मों के टिकट्स भी बहुत कम हुआ करते थे। आज की तरह मॉल में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर फिल्में देखना, वहाँ उस जमाने में हर किसी को नसीब नहीं हुआ था ना। मगर क्या है ना, एक साथ एक एक रुपया निकाल के जब टिकट खरीदते थे, एक साथ चाय पीते थे, एक साथ समोसे खाया करते थे, तो वो बात ही कुछ और बनती थी। हर हफ्ते इतना सारा मनोरंजन था ही नहीं, तो किसी एक फिल्म का महीने इंतजार करने के बाद 3 घंटों के लिए खुद को उस फिल्म के लिए बांधे रखना और कई सारी यादें घर लेके आना, ये जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया है ना, वो सभी के सभी जानते हैं कि उस जमाने की यारी क्या कहलाती थी। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह की आवाज में उस यारी को हम याद करते हैं। बने रहना FM रेनबो पर, आपका मनमीत आरजे अमित के संग मस्त मुंबई में।

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

कितना मजा आता था ना ये ऐसे गाने सुन के, ऐसा म्यूजिक सुन के, और साथ ही साथ उस म्यूजिक के संग कुछ पल बिता के फिर हमें लगता था अरे यार हम स्टोरी देख नहीं रहे हैं, वो स्टोरी हम जी रहे हैं। अब पता है महाराष्ट्र से, पुणे से हमें सुनील, सुषमा, राजवीर और अनन्या, ये गायकवाड़ फैमिली मैसेज करती हैं और कहती हैं कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान, इस फिल्म का हर एक गाना आज तक याद है। और ये जो फिल्म थी उन्होंने उस जमाने में 1974 में देखी थी, और देखने का कारण यही था कि उन्हें मैं ना भूलूंगा ये इसी फिल्म का गाना बहुत बहुत पसंद आता था। अब देखिए आज भी अगर इसी गाने का जिक्र करें ना तो आपको बताना चाहेंगे कि ये गाना आज भी लोगों के जहन में कायम है, और हम बतलाना चाहेंगे कि अगर इस गाने का आपने जिक्र किया है तो क्यों ना ये गाना हम आपको सुनाएं और गाने के साथ साथ कुछ बातें भी साझा करें। मगर उससे पहले हम चाहते हैं, संतोष जिनकर पाटिल उलवे से हमें सुन रहे हैं, राम प्रजापति कहते हैं कि हम लोग भी 5 दोस्तों के ग्रुप के साथ ट्रेनिंग का काम करते हैं और 90 का हम एक भी फिल्म या पिक्चर नहीं छोड़ते हैं, और हर संडे आज भी पिक्चर देखने जाते हैं। तो ये काफ़ी अनोखी बात होती है जो दोस्ती बनाने के लिए एक जरिया बन जाता है ना। आपको पता है मुंबई के सिंगल स्क्रीन्स में मैटिनी शो देखना सिर्फ फिल्म

देखना नहीं होता था, एक त्योहार देखने जैसा, त्योहार मनाने जैसा होता था। जैसे स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन या रजनीकांत की एंट्री होती थी, हॉल सिक्कों और तालियों की गूंज से सराबोर हो जाता था। वो बालकनी और स्टॉल की जंग, इंटरवल में मिलने वाला समोसा, कोल्ड ड्रिंक जैसे मैंने पहले कहा, और सस्पेंस फिल्म के क्लाइमैक्स पर पूरे थिएटर में छा जाने वाला सन्नाटा, यही तो थी असली सिनेमाई जादू और उन जादू की यादें। चलिए इसी ड्रामे को महसूस करते हैं एक और दमदार ट्रैक के साथ, जो कि आपको ले जाएगा एक और गाने की ओर। पता है ये गाना कौन से फिल्म से है? आइए आपको सुनाते हैं अब की बार ये अंदाज़।

क्या बात है, आज जूली फिल्म के इस गाने के साथ हमने आपको कुछ पुरानी फिल्मों की यादें तरोताजा कराई। प्रणव शिंदे जी कहते हैं कि संगम फिल्म को कल ही 62 साल पूरे हो गए। पंकज मोहर्जी जूली फिल्म की यादों के संग खो गए। संतोष जिनकर पाटिल कहते हैं, मैं रिटायर पुलिस ऑफिसर हूं, शोले फिल्म 93 में शादी पक्का होने के बाद मैंने औरत के साथ देखी थी। देखिए 75 में रिलीज हुई फिल्म 93 में भी लोगों को एंटरटेन करती रही है ना। साथ ही साथ प्रांजल पाटिल हमारे संग जुड़ी हैं, जो कि कहती हैं कि हमने भी 2005 में मेरे दोस्त के साथ कोई मिल गया ये फिल्म देखी थी, और प्रसाद के संग ये फिल्म देखते वक्त मुझे पता नहीं था कि तब हम सिर्फ दोस्त थे, मगर कोई मिल गया फिल्म ने हम दोनों को असल जिंदगी में साथी बना दिया। और 2013 में शादी हो गई और अब उन्हें दो बच्चे भी हैं। देखिए किसी फिल्म में अगर आप किसी का साथ निभाओ तो शायद आपके पर्सनल जिंदगी के रिश्ते भी बन जाते हैं। शंकराचार्य जी खम्मम सिटी तेलंगाना से हमें मैसेज करते हैं और वो कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, सभी बातें मैं सुन रहा हूँ, सब कुछ आनंद दे रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहे। वैसे आरजे अमित अक्सर कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। और आज अगर हमने ये अवसर ढूंढा है तो उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऐसे कई सदाबहार गानों के साथ, जो गाने हमें याद दिला रहे हैं पुराने दौर की। मगर अब समय हो चुका है हमें रुकने का। ठीक 10 बजे आप हिंदी में समाचार सुन पाएंगे और समाचार के उस पार आपको ले जाएंगे नमस्ते भारत इस कार्यक्रम में। बने रहना FM रेनबो पर, आपका मनमीत आरजे अमित के संग।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस की इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। इस महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के साथ हुई थी। समाचार में आगे, महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए कल शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इन निर्वाचन क्षेत्रों में सोलापुर, जलगांव, सांगली सतारा, नांदेड़, भंडारा, गोंदिया, नासिक, अमरावती, धाराशिव, लातूर, बीड, परभणी, हिंगोली, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, ये सारे शहर शामिल है। नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी मतदान हुआ। वोटों की गिनती 22 जून को होगी और नतीजे उस दिन घोषित किए जाएंगे। समाचारों में आगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कल कहा कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों और आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब होर्मुज जल डमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। और समाचार के अंत में, भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरिंग ने 1 गोल किया। उरुग्वे की चियारा एपेनिनो और मैनुएला विलार ने गोल किए। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: Mumbai International Film Festival MIFF 2026. इस फिल्म फेस्टिवल की हर खास खबर, हर बड़ी फिल्म और फिल्मकारों से विशेष बातचीत सुनिए 16 जून से 20 जून तक रोज रात 10 बजे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की विशेष रेडियो रिपोर्ट। तो जुड़े रहिए एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ और महसूस कीजिए विश्व सिनेमा का उत्सव केवल आकाशवाणी मुंबई पर।

0: ध्यानधारणा, योगसाधना ही भारतीय संस्कृतीने जगाला दिलेली एक अनमोल देणगी आहे. हीच ध्यानधारणा जगभरातल्या विविध प्रकारच्या हिंसा थांबवण्यासाठी नेमकी दिशा देईल अशा ठाम विश्वासाने जगभरात कार्यरत असलेले केमिकल इंजिनिअरिंग, पेट्रोलियम इंजिनिअरिंग ते इनर इंजिनिअरिंग असा प्रवास अनुभवणारे मंदार आपटे आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आपल्याला भेटायला येत आहेत FM गोल्ड वाहिनीवर.
1: मेंटल हायजीनसाठी आपण काय करतो? दर दिवशी आपण काय करतो त्याला साधना म्हणू शकतो आपण. धन म्हणजे वेल्थ, साधना म्हणजे माझं वेल्थ जे कोणी चोरून घेऊ शकत नाही.
0: आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त विशेष संवाद जरूर ऐका. दिनांक 19 आणि 20 जून रोजी सकाळी 11 वाजता 100.1 MHz FM गोल्ड वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR ॲपवरही.
2: नमस्कार दोस्तों, सुबह के 10:05 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते भारत. नमस्ते भारत एक ऐसा प्रोग्राम जिसे सुनने के लिए कई सारे लोग बेकरार रहते हैं. आपके संग जुड़ा हुआ है आपका मनमित आरजावीद. सुरमय सुबह की ठंडी हवा, रेडियो रेनबो की सतरंगी लहरों के साथ मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अमित हाजिर हूँ. आज हमारा कारवां कंक्रीट के जंगलों से दूर पगडंडियों के सीधे रास्ते से जा रहा है, मिट्टी की खुशबू समेटे हमारे गांव की ओर. क्योंकि आज की हमारी थीम आपको पता ही है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा. तो थामिए रेडियो का हाथ, FM रेनबो के संग खो जाइए ग्रामीण भारत के इस सुरीले सफर में.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
4: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
3: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
4: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
5: रीवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
6: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
5: आज ही विजिट कीजिए पीएन घाटगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोमिवली और बदलापुर।
6: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, राकेश माथुर जी आज हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग कलेक्शन आप हमें सुना रहे हैं, शुक्रिया। वर्ली से स्नेहा जी एंजॉय कर रही है हमारे शो को और प्रमोद चिंचोलकर जी भी हमारे संग जुड़े हुए हैं, संतोष जिनकर पाटिल हैं। विजयन चितले पुणे से हमें बताते हैं, बट आप ये भूल गए शायद, ये हिंदी शो चल रहा है तो हिंदी गीत आप हम आपको जरूर सुनाएंगे। फिलहाल आपको हम बताना चाहेंगे, आप रेनबो के दीवाने जो बने हुए हो ना, अब देखो गांव की जब बात निकलती है ना तो बैठे बैठे सिर्फ गांव का जिक्र करने के बाद ही हम यहां से कहीं ना कहीं ट्रैवल करने लग जाते हैं। फिर पता चलता है कि गांव सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का धड़कता हुआ दिल है ना। वो सुबह सुबह कुएं पर पनिहारिनों के कंगन के खनक, बैलों के गले में बंधी घंटियों की टुन टुन और चूल्हे

से उठता हुआ वो सौंधा धुआं, यही तो है असली भारत की आत्मा। चलिए इसी ग्रामीण मिजाज को थोड़ा और महसूस करते हैं और कुछ गानों के साथ, जो गाने सुनने के बाद आपको लगेगा अरे यार इनके संग हम जीना चाहेंगे, इनके बिना हम कहां जाएंगे, है ना। आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा अंदाज अगली पायदान पर सलमा आगा की आवाज में। बने रहना एफएम रेनबो पर, आपका मन मिजाज जमीत के संग। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई के बाद आपका वजनीदा कार्यक्रम नमस्ते भारत।

निकाह फिल्म का सलमान आगा ने गाया हुआ ये गाना आज भी क्या जबरदस्त याद दिलाता है उस जमाने की, है ना। हमारे प्रकाश शिंदे जी एक श्रोता है जो कि अक्सर हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, और सांगली जिले के जत तहसील में हिवरे नामक एक छोटा सा गांव है, वहां की ठंडी हवा दिल को फ्रेश रखती है, ऐसा उनका कहना है। मेरा गांव से सबसे प्यारा, लहराते हुए खेत वो बागों का नजारा, हरियाली से सजा है मेरा गांव प्यारा, शहर की ऊंची दीवारों में वो सुकून कहां, जो देता है मिट्टी की सौंधी खुशबू का सहारा। यहां सुबह का आगाज चिड़ियों के चहकने से होता है, मेरे गांव हरी चादर ओढ़े चैन से सोता है, दिखावे की इस दुनिया से बहुत दूर है ये, जहां हर शख्स एक दूसरे के सुख दुख में रोता है। क्या बात है यार, वाह। ऐसी बात अगर आपने सुनाई हो तो हम चाहते हैं कि इसे हम गाने के साथ जरूर सेलिब्रेट करें, क्यों नहीं, है ना। और इस बार एक ऐसा ही बहुत सदाबहार गाना लेकर हम आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर हैं। बस आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे संग बने रहना एफएम रेनबो पर, और सुनाएंगे हिवरे बाजार की या हिवरे गांव की कुछ कहानी, और साथ ही साथ गाने भी होंगे। तो बने रहना एफएम रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित के संग। बस ऐसे गाँव का नज़ारा जो आपने बयां किया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा गाँव देखने के बाद, उसके बारे में सुनने के बाद, मुझे लगता है कि यार गांव को भी हम कुछ कहें। तुम्हारे अलावा हम जाए तो जाए कहाँ, कहीं जाने का मन नहीं करता, बस गांव में ही बसे रहने का, पलने का और कुछ पल गुजारने का मन करता है। आइए उसी गांव के लिए कहते हैं ये दिल की बात किशोर कुमार की आवाज़ में।

चिलचिलाती गर्मी में जब हरियाली छा जाती है तब उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। महेश बोहरा राजस्थान से कहते हैं कि सॉन्ग कलेक्शन और आपकी बातें सुनकर दिमाग में और दिल में हरियाली छा गई है। विजय महाबिया हमें मैसेज करते हैं रामगंज खंडवा से। दीपाली शिरोडकर जी, श्रेय राव जी और फिरोज सिगानपुरिया जी, ये हर कोई बड़े ही अनोखे अंदाज में इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए हमारे सारे श्रोताओं को एंटरटेन कराते कराते 10:31 हो चुके हैं। मैं हूं आपका मनमीत आर जमी, जो कि सुना रहा हूं नमस्ते भारत में गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा ये सेगमेंट। और इसी सेगमेंट में हम बात करेंगे आज एक आदर्श गांव की। अगर हमारे लिसनर प्रकाश शिंदे जी ने, प्रणव शिंदे जी ने उसका जिक्र किया है, तो नमस्ते भारत में हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के एक अनोखे गांव हिवरे बाजार में। कभी पानी की बूंद बूंद को तरसने वाला ये गांव आज भारत का सबसे अमीर और आदर्श गांव है। यहां हर करोड़पति वो है जो खेती के दम पर बन गया है। पानी बचाने और पेड़ लगाने की जिद ने इस गांव की तकदीर ही बदल दी है, ना कमाल की बात है ना। तो चलिए सुनते रहिए, सफर अभी भी दिलचस्प है, जारी है। और गांव का भाईचारा, चौपाल, आधुनिक गांव कैसा बना, बदलाव कैसे हुए, ये भी कुछ ही पलों में हम आप सभी से बांटेंगे। फिलहाल हम चाहते हैं आपको सुनाएं ये एक बहुत ही प्यारा अंदाज, लता मंगेशकर की आवाज आप सभी के लिए इस गाने के साथ। सुनते रहना FM पर आपका मनमीत आर जैमित के संग।

देखते देखते 10:37 हो चुका है दोस्तों। आज गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है। इस सेगमेंट में आप सभी को जिस गांव की ओर हम ले गए हैं, उसी गांव की अगर बात करें तो वह आधुनिक गांव बना हुआ है। वहां पे भाईचारा और चौपाल भी देखने मिलता है। जहां हम शहरों में पड़ोसी का नाम तक भूल जाते हैं, वहां गांव में तो पूरी बस्ती एक परिवार होती है, है ना। और शाम को नीम के पेड़ के नीचे एक चौपाल सजती है, जहां कई लोग गप्पे मारते हैं, दुनिया के फैसले हो जाते हैं, गांव के भले बुरे की बात होती है, और निश्चल हंसी, बिना स्वार्थ का लाड प्यार सिर्फ और सिर्फ गांव की मिट्टी में तो मिल जाता है। आपको अगर आज भी याद होगा आपके गांव का कोई ऐसा पीपल का पेड़ जहां आपने कुछ पल बिताए हो, तो हमें जरूर साझा कीजिए वो पल 8657661071 पर। देखो वक्त बदल रहा है दोस्तों, और हमारे गांव भी बदल रहे हैं। अब भारतीय गांव है ना, लालटेन और बैलगाड़ियों तक सीमित नहीं है। आपको भी पता ही होगा वहां भी वाईफाई आ चुका है, कई स्टार्टअप्स आ चुके हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, हर किसी के हाथों में स्मार्टफोन आ गया है। परंपरा और आधुनिकता का ये फ्यूजन आज ही के नमस्ते भारत की असली ताकत है ना। तो यही ताकत जब हम कई गांव पर बेस्ड गीतों के जरिए

बयां करते हैं, तो ऐसे गाने हमारे प्लेलिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और हम चाहते हैं एक ऐसा ही बहुत ही प्यारा सा अंदाज आप सभी की नज़र करें, जो सुनने के बाद पवन के साथ आपका मन भी डोलने लगेगा। लता मंगेशकर की आवाज़ और ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
3: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
2: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
3: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
4: मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF 2026 की हर खास खबर, हर बड़ी फिल्म और फिल्मकारों से विशेष बातचीत सुनिए 16 जून से 20 जून तक रोज रात 10 बजे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की विशेष रेडियो रिपोर्ट। जुड़े रहिए FM रेनबो 107.1 MHz के साथ और महसूस कीजिए विश्व सिनेमा का उत्सव केवल आकाशवाणी मुंबई पर।

कितनी बढ़िया बात होती है ना, गांव भी प्यारा हो और गांव में हमारे साथ पल गुजारने वाले भी बड़े प्यारे हो, तो मानो हमारा दिन बन जाता है। उनके संग कुछ पल गुजारने का मन करता है और गुजारते गुजारते फिर पता न चले यार ये जिंदगी हमें उम्र के किस पड़ाव तक ले गई। इसे ही कहते हैं लंबी रिलेशनशिप। ये जिस किसी ने महसूस करी है, जिस किसी ने जी है, शायद उन्हें पता होगी इसकी अहमियत। और इसलिए हम चाहते हैं कि गांव हमें न सिर्फ अच्छे नज़ारे देता है बल्कि अच्छे रिश्ते भी देता है। तो ऐसे ही रिश्तों को संभाले रखिए जो बिना किसी डिमांड के, बिना किसी कंप्लेंट के आपके साथ बने रहते हैं। जिस तरह गांव आपको प्यार देता है, उसी तरह वो भी आपको प्यार देते हैं। उनके संग कुछ पल बिताने के बाद आपको पता चलता है कि ये सिर्फ पल नहीं बल्कि कुछ ऐसी यादें दे गए जिन यादों के संग हम हमारी ज़िंदगी के कुछ हसीन पल गुजार चुके हैं। उनके संग कुछ पल बिताते हुए हमें भी ऐसे लगता है कि वो आए हमारे कानों में कह दे कि तू बिन बताए मुझे ले चल गई। चलिए, मेरा यानी आर जमित का जाने का समय हो चुका है और बस ठीक 11 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार के उस पार हमारी एक और आरजे नमिता अगले शो के संग आप सभी के संग ये सफर तय करेगी। तो हम चाहते हैं कि आप FM रेनबो पर उनके साथ भी जुड़े रहें। मिलते हैं जल्दी अगले शो में। तब तक के लिए बाय बाय। स्टे सेफ, बी हैप्पी।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल। मैं हूं आरजे नमिता आपके साथ। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। मुंबई में वेस्ट के कर्मचारियों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिससे मुंबई की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई और लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को सुबह के व्यस्त समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ऐप आधारित कैब और मेट्रो जैसे विकल्प परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता है वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग के लाभों की अपेक्षा नहीं कर सकते। फीफा विश्व कप में ग्रुप बी में कनाडा ने कल रात कतर को 6-0 से हरा दिया। कनाडा ने जोनाथन डेविड के 3 गोल किए। इससे पहले कल अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप ए के मैचों में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इसी के साथ समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

शिकवा करने गए थे और इबादत सी हो गई, तुझे भुलाने की जिद थी मगर तेरी आदत सी हो गई। हाय हेलो सत श्री अकाल वणक्कम केम चिका सकाय मुंबई, मैं हूँ आरजे नमिता आपके साथ और आज करूँगी दिल की बात ब्रेक फ्री में। दिल की बात ये है कि हम कितनी ही शिकायतें कर लें लेकिन शिकायतों से शुक्रिया तक का सफ़र कैसा होता है, क्या क्या होता है इन दोनों ही टर्म्स के बीच में, वो आपसे बात होगी। दोस्तों हमारी ज़िंदगी बदल सकता है एक शुक्रिया, और अक्सर हम शिकायतों की गठरी लेकर चलते हैं। किस्मत से शिकायत, हालात से शिकायत, लोगों से शिकायत और कभी कभी खुद से भी शिकायत। लेकिन क्या हो अगर हम इन शिकायतों को शुक्रिया में बदल दें। आज का हमारा सफ़र शिकायतों से शुक्रिया तक का होगा। रंज से खुंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी भी आस हो गई।

0: सुरक्षित गुंतवणूक, आकर्षक व्याजदर, कॉस्मॉस डिपॉझिट स्कीम।
1: सर्वसाधारण आणि संस्था ठेवीदार 7.10%, ज्येष्ठ नागरिक 7.30%,
0: मुदत 13 महिन्यांच्या पुढे ते 24 महिन्यांपर्यंत,
1: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 7.55%,
0: मुदत 24 महिन्यांच्या पुढे ते 36 महिन्यांपर्यंत, अटी लागू।
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध।
3: Riva Diamonds from the house of PNG and Sons प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
4: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
3: आज ही विजिट कीजिए PN गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
4: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जी हाँ, शिकवे शिकायतों की बात की जाए तो अक्सर ही उनसे हम शिकायत करते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है और जो बहुत अपने होते हैं, वरना शिकायत की कोई बात ही नहीं होती। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो शिकायतें पैदा हो जाती हैं। शिकायतें आखिर अपनों ही से तो की जाती हैं। बस शिकवे शिकायतों को नफ़रत और गुस्से का तड़का ना लगे, तभी तक बेहतर रहता है कि नहीं? और कहते ना, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो भाई, उम्मीद जो है वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती हैं जो हम खुद से भी करते हैं, और कई बार ऊपर वाले से भी हमारी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, और अक्सर ये शिकायतें जो रहती हैं ना, वो पेंडिंग में चलती रहती हैं। लेकिन जब तक हमें जो मिला है उसका हम शुक्रिया अदा नहीं करते, तो हमारी अगली जो शिकायत होती है उस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। ऐसा होता है क्या आपके साथ? जी हाँ, इसलिए शुक्रिया अदा करना कभी ना भूलें। हम अक्सर जो नहीं मिला उसी पर नज़र रखते हैं, और जो मिला होता है उसकी अहमियत भूल जाते हैं। जिन मुश्किलों को हम बद्दुआ समझते हैं, असल में वही हमें मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, शिकायतें हमें अतीत से बांधती हैं, और शुक्रिया हमें वर्तमान का आनंद लेना सिखाता है। जब हम जीवन को स्वीकार कर लेते हैं तो शिकायतें अपने आप कम होने लगती है, होता है ना? यही बने रहिए आरजे नमिता के साथ ब्रेक फ्री प्रोग्राम में, FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

बात हो रही है शिकायतों से शुक्रिया तक की। मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। रिश्ते खूबसूरत होते हैं तब हम शिकायतें कम और शुक्रिया ज़्यादा कहते हैं। सुबह की चाय, परिवार की मुस्कान, दोस्तों का साथ, स्वस्थ शरीर, ये सब कितने बड़े उपहार हैं। हम अक्सर जो मिला नहीं होता हमें उस पर नज़र रखते हैं और जो मिल गया होता है उसकी अहमियत भूल जाते हैं। तो आज आप किस बात के लिए शुक्रगुजार हैं जल्दी से लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8657661071 पर। बने रहिए यहीं एफएम रेनबो पर, दिल से दिल तक।

जी हाँ दोस्तों, शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है उन बातों के लिए जिन्हें हम महसूस तो करते हैं लेकिन काउंटिंग उनकी नहीं रखते। और बहुत से हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें खुश रखने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रयास कर रहे होते हैं और उनके वो प्रयास वो बताते भी नहीं हैं, और बिना बताए उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो पॉजिटिविटी है, वो हम सब लेते जाते हैं और उसी का यूज़ करके डे टू डे लाइफ में जो पॉजिटिव काम करते हैं, जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं, वो सब

ना कहीं काउंटेबल होती है। और आज वक्त है कि इस वक्त आप बता सकें कि आप किसको शुक्रिया करना चाहते हैं और किस बात पे करना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी हमारे पास आए हैं और जिसमें कुछ लोगों ने शुक्रिया ऊपर वालों का किया है कि ऊपर वाले ने हमें इतनी सारी चीज़ें अच्छी दे रखी है। शिकायतें तो फिर भी बहुत होती हैं क्योंकि उम्मीदों की जो कहा जाए या ख्वाहिशों की जो लिस्ट होती है वो इतनी लंबी होती है कि शुक्रिया अदा करने का समय ही नहीं मिलता। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। भाई यही इंसानी प्रवृत्ति है और ऐसे ही हमारी जो दिनचर्या है ना वो इन छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में ही गुजरती है। कई बार तो हम शुक्रिया या मेहरबानी का जिक्र किसी और से कर कर भी शुक्रिया अदा कर देते हैं। आपने सुना होगा कि पीठ पीछे लोग किसी की तारीफ करें तो वो भी एक तरीके का शुक्रिया ही होता है। अक्सर हम सामने कह देते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपकी ये चीज़ अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उनके जाने के बाद अक्सर लोगों से बातचीत करते हैं तो जो अच्छाइयाँ हम उनमें ढूंढते हैं और उनका गुणगान करते हैं वो भी एक तरह का शुक्रिया होता है। अच्छा, बचपन की एक बात मुझे ज़रूर याद है। मेरे जो पिताजी थे, नंबर चाहे स्कूल में हमें कुछ भी मिल रहे हो पर अगर पास हो गए हैं बच्चे तो वो हमेशा ही एक मिठाई का डब्बा जो है वो लेकर घर आया करते थे। एक बार तो जो हमारे छोटे भाई हैं वो ज़रूर बहुत कम नंबरों से पास हो रहे थे और हम लोग बड़े दुखी थे कि इतने कम नंबरों के बावजूद भी पिताजी जो हैं वो मिठाई का डब्बा क्यों लाए हैं जब नंबर ही अच्छे नहीं आए। तो उनके मुँह से एकाएक निकल पड़ा कि हर बात का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं। कई बार हमारा जो अपना एक स्तर होता है, एक लेवल होता है, हम उसको अचीव नहीं कर पाते, लेकिन एक छोटा सा भी अचीवमेंट है तो उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए हमें, ऊपर वाले का भी। कई बार उसका भी जिसने उसमें मेहनत की है, सफल नहीं हुआ, उसने मेहनत की है और वो हमने देखी है तो उसके लिए भी शुक्रिया होता है। आप क्या कहते हैं, जल्दी से लिख भेजिए हमें आपके मन की बात यहीं FM रेनबो पर। ब्रेक फ्री प्रोग्राम, आरजे नमिता है आपके साथ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
4: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
3: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वेलकम बैक। आपका भी एहसान है बिल्कुल इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करने के लिए। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेजेस ये हैं मेरे पास कि हम तो आपको भी थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि आप इतने अच्छे गाने सुना रही हैं। शुभदा जी भी लिख रही हैं हमें, अशोक पाटिल जी वर्ली से लिख रहे हैं, पंकज जी हैं, दर्शनाथ जी हैं, राजेंद्र जी हैं, साथ ही हमारे साथ हैं राकेश माथुर, राम प्रजापति, धनंजय जी, महेश जी, संजय जी और रजनीकांत जी, बहुत सारे और भी लोग, शुभ लक्ष्मी जी, अजय जी हमारे साथ हाल ही में जुड़े हैं, विजेंद्र जी हैं, प्रणव शिंदे जी हैं, संदीप कुमार हैं, फिरोज जी हैं, प्रदीप जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस करने के लिए। और जिसको भी आप धन्यवाद दे रहे हैं, यकीन मानिए बहुत सारे मैसेजेस हैं और एक एक करके पढ़ने ही वाली हूँ मैं, लेकिन आप जिसे भी धन्यवाद दे रहे हैं इस वक्त, उस तक वो फीलिंग ज़रूर पहुँच रही होगी, भले ही हम उनका नाम यहाँ ऑन एयर लें या ना लें, है कि नहीं। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF 2026 की हर खास खबर, हर बड़ी फिल्म और फिल्मकारों से विशेष बातचीत आप सुन सकते हैं 16 जून से 20 जून तक रोज रात 10 बजे MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 की विशेष रेडियो रिपोर्ट। तो जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ 107.1 MHz में और महसूस कीजिए विश्व सिनेमा का उत्सव केवल आकाशवाणी मुंबई पर।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल. मैं हूं आरजे नमिता आपके साथ और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार. मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाशी अभियान जारी है. इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा करा लिया. मिजोरम ने 8,75,000 मतदाताओं के 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है, जिससे वे चल रहे राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में अन्य राज्यों से आगे निकल गया है. भारतीय तेलवाहक पोत दिशा हॉर्मुज से गुजरात के दहेज बंदरगाह पर पहुंच चुका है. इस पोत पर 62,377 मैट्रिक टन LNG लदा हुआ है. यह गैस कतार के रास लफान टर्मिनल से निकला था. इससे देश में नेचुरल गैस की आपूर्ति में मदद होगी. मुंबई में बेस्ट के कर्मचारियों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे मुंबई की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई और लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. यात्रियों को सुबह के व्यस्त समय में से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ऐप आधारित कैब और मेट्रो जैसी वैकल्पिक परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ा. इसी के साथ समाचारों का यह अंक समाप्त होता है.

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पे. आज नमिता के साथ हैं. म्यूजिक कैफे का सफर शुरू हो चुका है और बात होने वाली है आपके खतों पर, आपकी बातों पर, आपके एसएमएस पर, इवन आपके मैसेंजर्स पर. बहुत सारी चीज़ें जो संदेश देने की होती हैं उन पर हम बात करने वाले हैं. संदेशों के ज़रिए जो हैं वो बदल चुके हैं लेकिन भावनाएं वहीं की वहीं. बिल्कुल उन्हीं संदेशों पर बातचीत होगी. उनकी क्या हिस्ट्री है और कब से संदेश जो हैं वो जा रहे आ रहे हैं. बहुत से लोग इन संदेशों के बीच हमारी नज़र में आते हैं लेकिन नज़र ही नहीं आते हैं. उन पर भी बातचीत होगी. आपके कुछ खास संदेशों को ज़रूर इसमें शामिल करूँगी. बने रहिए एफएम रेनबो पर, दिल से दिल तक.

0: रेवा डायमंड्स फ्रॉम द हाउस ऑफ पीएनजी एंड सन्स प्रस्तुत कर रहे हैं खास मॉनसून ऑफर।
1: असली डायमंड की असली चमक, आधुनिक डिजाइन और मेकिंग चार्जेस पर 100% तक की छूट।
0: आज ही विजिट कीजिए पीएन गाडगिल शोरूम, रचना संसद, प्रभा देवी, सृष्टि प्राइम, गोखले रोड, ठाणे, फड़के रोड, डोंबिवली और बदलापुर।
1: रेवा नेचुरल डायमंड ज्वेलरी, शाइन नेचुरली।
2: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
3: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
2: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
3: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन।
2: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि लिखते लिखते हम कवि भी बन जाते हैं। दोस्तों, आज के दौर में एक मैसेज भेजने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन एक दौर था जब डाकिये की घंटी किसी त्योहार से कम नहीं लगती थी। एक चिट्ठी में इंतजार था, अपनापन था, भावनाएं थी और कभी कभी पूरी जिंदगी का सार भी छुपा होता था। आज हम ऐसे ही मैसेजेस और खतों की बातें करेंगे, उन गीतों की भी बातें करेंगे जो दिल को छू जाते हैं और दिल तक एक पुल बनाते हैं। दोस्तों, खत कागज पर लिखे जाते हैं, मैसेज स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन असली संदेश दिल पर ही लिखे जाते हैं। आज भी किसी अपने को प्यारा सा संदेश भेजते हैं आप, तो उसमें कई सारी भावनाएं छुपी होती हैं और कई बार लफ्ज ना कम पड़ जाते हैं। कैसे शुक्रिया अदा करें या कैसे बात कहें कि जो हम बोलना चाहते हैं वो सामने वाले तक पहुंच भी जाए। आपके साथ ऐसा होता है क्या? जी हाँ, अगर होता है तो ये वाला गाना आपके लिए इस वक्त FM रेनबो पर है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: आकाशवाणी FM रेनबो
8: म्यूजिकलियर, ऑफ कोर्स म्यूजिकलियर FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़। अर्जुन अमिता आपके साथ है और हम कर रहे हैं खतों की बात, संदेशों की बात। प्राचीन भारत में दोस्तों राजा महाराजा अपने संदेश जो है ना विशेष दूतों और कबूतरों के माध्यम से भेजते थे। युद्ध की खबरें, प्रेम के संदेश और राज्य के आदेश इन्हीं के सहारे पहुँचते थे। तकनीक भले ही बदल जाए लेकिन संवाद की आवश्यकता अभी भी नहीं कम हुई है।

उसकी ज़रूरतें और उसकी जो टाइमिंग है वो भी कम हो गई है, यानी जल्दी जल्दी संदेश पाए जा सकते हैं। ब्रिटिश काल में 1894 के में आधुनिक भारतीय डाक विभाग की जो है स्थापना हुई थी, और डाकिया सिर्फ चिट्ठियां नहीं लाता था, वो खुशियां, उम्मीदें और अपनों की खबर लाता था। एक समय था जब प्रेम का इजहार इमोजी से नहीं, स्याही से लिखा जाता था। हर शब्द सोच

नहीं पाते थे। सो आज जो हमारे पास हमारे हाथ में है, जिन्हें हम GIF कहते हैं, इमोजीज के साथ साथ हमें मिलते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका हो गया है अपने संदेशों को पहुंचाने का।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूं अर्जुन अमिताभ के साथ. लीजिए प्रस्तुत है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम यानी प्रायोजित प्रोग्राम एनसीईआरटी उमंग.

0: शब्दांग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
0: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता

0: पंकज, आयुषी और मीहू का लिखा है। नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
1: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
1: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
1: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त तो होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। यह झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल

0: झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-5559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है, गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की।
3: बिन्नी का सपना।
2: एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है, कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
3: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे,
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है।
3: आज का हमारा,
2: जब मेरी नींद खुली
3: होता है तो अपने मित्र
2: तो मैंने अपने
1: और विनेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर।
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते।

कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विश्व

हल्काए आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां
मुझे दिन में

दस दस बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना

0: अरे तुम्हें क्या हुआ?
1: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
0: ओह, किसने किया तुम्हारी ये हालत?
1: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT की ओर से। कुछ ही पलों में आप समाचार सुन सकेंगे।

90.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आरजी नमिता और आप सुन रहे हैं हिट एंड हॉट प्रोग्राम, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम, आप ही के गाने, आप ही की भावनाएं और सवाल बस मेरे। जवाब लिखने के तैयार रहिए 8657661071 पर। फिलहाल पहला वाला गाना जो आ रहा है हिट एंड हॉट का, वो है फिरोज जी की पसंद का, और इसके बाद अशोक पाटिल जी की पसंद का गाना बजेगा। बने रहिए हमारे साथ FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारा सवाल जो है आपका इंतज़ार कर रहा है. सबसे पहले हमसे जो जुड़ गए हैं उन सभी श्रोताओं के नाम ज़रूर हम लेना चाहेंगे. इस प्रोग्राम में जुड़े हैं विजेंद्र जी अकोला से, फिरोज जी, अशोक पाटिल जी, महेश जी, पंकज जी, सुयोग जी, शुभदा जी, हीरामणि वर्मा जी, हितेंद्र दास जी, प्रमोद जी, अजय जी, अभिजीत जी, राकेश जी, अशोक ठाकुर जी मुलुंड से, और प्रकाश जी, दिग्दर्शन जी और कविता जी उनके साथ ही, राम प्रजापति जी, बाबा जी दादर से, राजेंद्र परमार जी, श्रीनिवास जी, मंगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, शोभा रानी जी जुड़ी हैं, दर्शननाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय दर्शन जी, श्रेय राउत जी, रजनीकांत पाटिल जी, प्रणव शिंदे जी, संदीप कुमार जी, प्रदीप जी, विजय जी, दीपाली जी, विजयंत जी, स्नेहा जी वर्ली से, संतोष जी और उनके साथ ही बहुत सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं और उनकी पसंद के गाने भी हमारे पास आ चुके हैं. फिलहाल ये जो गाना आपने अभी अभी सुना वो अशोक पाटिल जी की पसंद का था, और आगे बढ़ते हैं विजेंद्र जी की पसंद का गाना सुनते हैं. लेकिन आपको जल्दी से बताना है ये डायलॉग सुनकर कि किस फिल्म का डायलॉग है. जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं. डायलॉग फिर से सुनिए. जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते रहो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की. कौन सी फिल्म का ये डायलॉग है जल्दी से

भेजिए हमें, और हमारा नंबर आपको पता ही है 8657661071। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, मैं हूँ नमिता। हिट एंड हॉट का सफर जारी है और ये उड़ जा काले कावा, उदित नारायण की आवाज़ में ये वाला गाना गदर फिल्म से।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. और हमारे सवाल का सही जवाब जो है वो आ चुका है हरजिंदर जिंदा जी के पास से. जसवीर जस्सी जी, सीता जी और गीता जी, ये सब मिलकर हमें मैसेज करते हैं और सही जवाब देते हैं. रंग दे बसंती फिल्म का डायलॉग है. डायलॉग क्या था कि ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो और बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की. ये डायलॉग जो है रंग दे बसंती फिल्म का है और सही जवाब तो हरजिंदर जी ने हमें दिया ही है. साथ ही बहुत सारे हमारे दोस्तों ने दिया है, लेकिन उनके बाद बहुत सारे सही जवाब आए हैं. शुभलक्ष्मी जी, प्रमोद जी, सभी ने सही जवाब दिया है. अभिजीत जी, और आप सभी की फरमाइशों पर हम गाने बजाते हैं. ये जो गाना हाल ही में आपने अभी सुना, इसे पसंद किया था संदीप कुमार जी ने. पंकज जी की पसंद का गाना बिल्कुल ऑन द वे है. और आप सभी की पसंद बजाने का मेरा इरादा नेक है, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से जितना हो सकता है हम उतने लिसनर्स की चॉइस ज़रूर लेते हैं. बने रहिए यहीं अपनी पसंद के गानों के लिए एफएम रेनबो पर.

बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बड़ा क्रेज है, बाय गॉड. जी हाँ, आपको बताना है किस फिल्म का डायलॉग है और हमें लिख भेजना है 8657661071 पर. कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे और समाचारों के पार आपकी पसंद के गाने होंगे. हिट एंड हॉट प्रोग्राम में बने रहिए यहीं FM रेनबो के साथ.

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पे. आज नमिता आपके साथ है. हिट एंड हॉट का सफ़र जारी है और हमारे अगले जो श्रोता हैं जिनकी पसंद का हम गीत सुनने वाले हैं वो हैं पंकज मोहोड़ जी और उनके साथ ही

ये गीत आपने सुना अशोक जी मुलुंड से, जो हमें लिखकर भेज रहे थे उनकी पसंद पर। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बड़ा क्रेज़ है, बाय गॉड, ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? तो इसका सही जवाब है जब वी मेट, फिल्म का ये डायलॉग है। और यहाँ तक कि इस डायलॉग को बोलने का स्टाइल तक लोगों को याद है। फिलहाल बहुत सारे सही जवाबों में सबसे पहला जवाब जो हमारे पास आया है वो राकेश माथुर जी का है। बहुत बहुत बधाइयाँ राकेश जी आपको। और अगला जो गीत हम पसंद पर सुनने जा रहे हैं वो है लाल गिरी गोस्वामी जी, राजस्थान से लिख रहे हैं, उनकी पसंद का गाना आ रहा है इस वक्त।

वक्त का काम तो गुजरना है, अच्छा है तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्र करो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आरजे नमिता को दीजिए इजाज़त। आखिरी वाला गाना जो इसके बाद बजने वाला है वो होगा स्वर्ण सिंह गिल और दिलजीत सिंह की पसंद पर फिरोजपुर पंजाब से। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, कुछ ही पलों में इस गाने के उस पार होगा समाचार।

0: दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर

0: में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार 2रे और 3रे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली NEET UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे।

और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट

0: उनकी जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मायक नैया चिवड़ी माया घर मध्य झाणी यही आणी बाणी

5:10 हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। मेरा नाम है सोनम एंड शफकत अमानत अली शंकर महादेवन एंड कैरिलीसा मोंटेरो की आवाज में आप सुन रहे थे कभी अलविदा ना कहना से ये वाला ट्रैक। एंड अलविदा कहने की तो नौबत नहीं आएगी क्योंकि शो की शुरुआत अभी हुई है और आज हम लव यू जिंदगी में बात करने वाले हैं कुछ आई वुड से हटके, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ क्यूरियस। और अगर आप फिलहाल रोड पर हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, तो फिर ये शो तो आपके लिए ही बना हुआ है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मैसेजेस के, कुछ ऐसे साइंस के जो कि गाड़ियों के पीछे, जो कि ट्रक्स के पीछे, जो कि ऑटो रिक्शाज के पीछे, जो कि टैक्सीज के पीछे लिखे हुए होते हैं और अजीबोगरीब मैसेजेस होते हैं। अगर आपके जहन में ऐसे कोई मैसेजेस हैं ये आपको मुझे बताना है और 8657661071। और ये आइडिया मुझे तब आया जब मैं खुद स्टूडियो की तरफ आ रही थी एंड कुछ चटपटा सा अजीबोगरीब मैसेज लिखा हुआ था जिसके बारे में बात करूंगी। पर फिलहाल आपके जहन में ऐसे कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो। और जब तक आप मुझे मैसेज करते हैं ऑन व्हाट्सएप, आपके लिए आ रहे हैं बैक टू बैक गाने। फिलहाल तो जो अगला गाना आप सुनने वाले हैं ये है शंकर महादेवन, सौम्या रॉय एंड लॉय मेंडोंसा की आवाज में, दिस इज फ्रॉम द मूवी बंटी एंड बबली। आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

मीका सिंह, नीरज श्रीधर, आशीष पंडित की आवाज में आप सुन रहे थे सिंग इज किंग का टाइटल ट्रैक। और ये एक ऐसा मैसेज है जो कि काफी सालों पहले अक्षय कुमार ने एक ट्रक के पीछे देखा था और फिर उन्होंने इस मूवी का टाइटल का सजेशन इस मैसेज के पीछे दिया था। और आज हमारा जो टॉपिक है लव यू जिंदगी में, वो भी कुछ ऐसे ही है कि आपने कोई ट्रक के पीछे या कोई ऑटो के पीछे या फिर कोई टैक्सी के पीछे कोई अजीबोगरीब स्लोगन या फिर मैसेज अगर देखा है तो प्लीज हमें मैसेज करें। एंड आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। पंकज मोहर ने मैसेज किया है हमको, राजेंद्र परमार का मैसेज आया है, संजय दर्शन ने मैसेज किया है, महेश बुहारा ने मैसेज किया है, संतोष दिनकर पाटिल का भी मैसेज आया है एंड बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस भी आए हैं आपके वहां से। एंड आई थिंक सबसे कॉमन जो आप मोस्ट ऑफ देम जिनके मैसेजेस आए हैं उन्होंने लिखा है देखो मगर प्यार से। ये मुझे लगता है बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स अपने ट्रक के पीछे इस मैसेज को लिखते हैं। फिर एक तो वो होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। एंड बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस भी होते हैं नॉट जस्ट ट्रक्स के पीछे पर ऑटोज के पीछे भी आपको ऐसे काफी अलग अलग तरह के स्लोगन्स या आई वुड से मैसेजेस मिलेंगे। और कुछ अलग हटके वाला कुछ होगा ना तो प्लीज मुझे जल्द से जल्दी मैसेज करो। 8657661071 है हमारा नंबर। एंड यस, आपके जो मैसेजेस है जो आपने बड़े प्यार से मुझे भेजे हैं वो भी मैं बताऊंगी ऑन एयर। फिलहाल तो अगले गाने का वक्त हो गया है और इस गाने को गाया है सुनिधि चौहान ने। दिस इज धूम का टाइटल ट्रैक। आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

कुराल गांजावाला एंड जावेद अली और उनके साथ साथ श्वेता पंडित की आवाज में आप सुन रहे थे नील एंड निकी से वाला ट्रैक 5:38 बाय द स्टूडियो क्लॉक. आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर. हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है लव यू जिंदगी. मेरा नाम है सोनम एंड मैंने आपसे पूछा है कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से मैसेजेस या फिर स्लोगन्स जो आप किसी ट्रक के पीछे या फिर किसी टैक्सी के पीछे या फिर किसी ऑटो के पीछे देखते हैं. और संजय दर्शन ने बहुत सारे मैसेजेस लिख के भेजे जिसमें से आई थिंक फनीएस्ट वाले तो सारे के सारे ही है. पर ये बहुत ही कॉमन सा है, जल मत पगली किश्तों पर आई है. और ये बहुत सारे ओनर्स और जो टैक्सी के ड्राइवर्स होते हैं या फिर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं ये मैसेज तो लिखते ही है. इसके अलावा भी कुछ कुछ एकदम सेंटिमेंटल मैसेजेस होंगे या फिर प्यार में धोखा खाए हुए जो आशिक होते हैं वैसे वन साइडेड लव वाले मैसेजेस भी आपको कई सारे देखने मिलते होंगे. श्रीधरन बालचंद्रन का मैसेज आया है. वो थोड़ा अलग जगह पर एक स्लोगन देखकर आए थे और वो जगह थी पान की दुकान जहां पर लिखा था आज

कल उधार आ रहा है। ये बहुत सारे स्टोर्स के पास जो छोटी मोटी टपिया होती है वहां पर आपको यू नो ये मैसेज देखने को मिल जाएगा। महेश बोहारा का भी मैसेज आया है, उन्होंने भी एक एकदम सेंटिमेंटल सा और एकदम रिलीजियस सा मैसेज भेजा है। मेरे खुदा कहता है मत सोच रे बंदे तू इतना जिंदगी के बारे में, मैंने तुझे जिंदगी दी है तो कुछ तो सोचा होगा तेरे बारे में। ऐसे भी बहुत सारे मैसेजेस आपको देखने मिलते हैं बिहाइंड द फोर व्हीलर, बिहाइंड अ ट्रक, बिहाइंड अ टैक्सी। और अगर आपको भी ऐसे कोई मैसेजेस याद आ रहे हैं प्लीज लेट मी नो ऑन 8657661071। वक्त हो चला है एक छोटे से स्पॉट ब्रेक का, उसके बाद आप सुनने वाले हैं दो बैक टू बैक गाने, तो आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

सुखविंदर सिंह, निशा एंड कैरलीसा मोंटेरो एंड मरियान की आवाज में आप सुन रहे थे ओम शांति ओम से ये वाला गाना। इट इज 5:49 बाय द स्टूडियो क्लॉक और हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है लव यू जिंदगी। मेरा

मैं सोनम और हम बात कर रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग से कैप्शंस के बारे में, जो कि आपको किसी ट्रक के पीछे नजर आते हैं, या फिर किसी ऑटो रिक्शा के पीछे, या फिर किसी टैक्सी के पीछे नजर आते हैं। मैसेज आया है हमको अजय सखारे का, इंदौर से इन्होंने मैसेज किया है। आई थिंक द बेस्ट मैसेज एवर, जियो और जीने दो। ये उन्होंने कहाँ देखा है ये तो उन्होंने नहीं बताया, बट देखा ही होगा किसी ट्रक के पीछे। और रजनीकांत पाटिल का मैसेज आया है हमको, वो भी कह रहे हैं कि टैक्सी के पीछे लिखा हुआ देखा था उन्होंने, जगह मिलते ही पास दिया जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। इनफैक्ट ये जो हॉर्न ओके प्लीज वाला मैसेज है, इसके पीछे एक रीजन भी है। वो ओके डज नॉट मीन ओके। एक्चुअली पहले के जमाने में पेट्रोल नहीं होता था, तब जब जो ट्रक्स होते थे ये सारे ट्रांसपोर्ट का काम ज़्यादा करते थे। अभी तो फिलहाल ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट का काम करते ही हैं, पर पहले ये केरोसिन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके पीछे ट्रक्स काफ़ी यूज़ किए जाते थे। तो जो ओके होता है उसका मतलब होता था ओनली केरोसिन, एंड तब से फिर उसको शॉर्ट में ओके का टाइटल दिया गया। तो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड हॉर्न ओके प्लीज। और बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं हमको फिरोज सिगनपुरा ने, शायरी वाले, फिल्मी एटीट्यूड वाले, फिलोसफिकल, और उन्होंने रिलीजियस वाले जो कैप्शन है वो भी दिए हैं, जो फनी वाले कैप्शन है वो भी दिए हैं। एंड जैसे मैंने कहा, ये जो इमोशनल वाले होते हैं, ये वन साइडेड प्यार वाले, वैसे भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। अगर आपके जहन में से कोई मैसेजेस आ रहे हैं हमें प्लीज भेजिए ऑन 8657661071। और जो अगला गाना है आप सुनने वाले हैं, मीका सिंह की आवाज में है ये गाना, खिलाड़ी 786 से। आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

6:20 हो रहे हैं, आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है अंदाज़े बयां, और इसके पहले आप सुन रहे थे रूना लैला की आवाज़ में मस्त कलंदर का ओरिजिनल वर्जन। इनफैक्ट इसके पहले भी एक वर्जन था ऑफ नुसरत फतेह अली खान साहब, और उनका गाना आपने इस गाने के पहले सुना था, विच वॉज अगेन दी ओरिजिनल किन्ना सोना, जिसके मल्टीपल वेरिएशन आ गए हैं। कुछ कुछ तो हिंदी मूवीज में आ गए हैं, कुछ कुछ एल्बम्स में आए हैं, पर फिलहाल क्योंकि शो का नाम है अंदाज़े बयां, हम यहाँ पे प्ले करने वाले हैं जो इंडी पॉप एल्बम्स है, जो गजल्स है, जो कवालीज है, जो नज़में हैं, वो होने वाली है प्ले इस आवर में। और इसलिए जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूँ मैं, अगेन अ वेरी रेयर सॉन्ग, इला अरुण जी की आवाज में है ये, और इसके बाद आप सुनेंगे थोड़े बहुत इंडी पॉप ट्रैक्स, और ठीक 6:30 होगा एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक, उसके बाद फिर से आ जाऊंगी मैं ऑन एयर आपसे बातें करने, और इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।

0: भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: आकाशवाणी FM रेनबो।
7: छह बजकर 21 मिनट हो रहे हैं, आप ट्यून्ड इन हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर। हमारा शो चल रहा है जिसका नाम है अंदाजे बयां, मेरा नाम है सोनम। और इस छोटे से स्पॉट ब्रेक के पहले आप सुन रहे थे शुभा मुद्गल की आवाज में एक गाना। और क्योंकि शो का नाम है अंदाजे बयां, हम प्ले करते हैं थोड़ी बहुत हिंदी मूवीज से हटके कुछ ट्रैक्स जो कि आप यूजुअल बेसिस पे नहीं सुनते। और मेरा तो ये कहना है कि आप लोग, मुझे लगता है 90s के इंडी पॉप को बहुत एंजॉय करते हैं, तो आई फील कि मुझे हर एपिसोड में या हर शो में मुझे ट्राई करना चाहिए कि मैं यही गाने आपके लिए प्रेजेंट करूं, बिकॉज ये हमें थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिक भी बना देते हैं। और जब उस जमाने की बात चलती है तो ऑफकोर्स थोड़े से हम तरोताज़ा हो जाते हैं। एंड क्योंकि आज फ्राइडे इवनिंग है तो थोड़ा सा अलग कुछ मज़ा करते हैं, और इसलिए जो अगला गाना है ये प्ले करने वाली हूँ, अगेन वैशाली सामंत की आवाज़ में है ये गाना। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस गाने को गेस कर चुके होंगे अब तक तो। और इसके बाद कौन सा गाना आएगा वो ट्यून्ड इन, वो जानने के लिए आपको ट्यून्ड इन रहना है। और इंडी पॉप गाने प्ले हो रहे हैं तो अगर आपको कोई गाने सुनने हैं आप मुझे बता सकते हैं, अगर वो मेरे लिस्ट में हुए तो वो प्ले होंगे, वरना फिर मैं ट्राई करूंगी उसे अगले शो में प्ले करने के लिए। पर फिलहाल तो देखते हैं कि वो गाने इस आर में प्ले होंगे या नहीं होंगे। नंबर है हमारा 8657661071।

सुखविंदर सिंह एंड शुभा मुदगल की आवाज में आप सुन रहे थे ये वाला गाना। इस गाने का जो एल्बम था दैट वाज प्यार के गीत, जिसमें बहुत सारे अलग अलग गाने थे, बट ये गाना सबसे हिट हुआ था। और क्योंकि ये गाना हिट हुआ था, फिर एक और ट्रैक इन्होंने रिलीज किया था विद द टाइटल प्यार के गीत, जो कि एल्बम का भी ट्रैक है। एंड एट द सेम टाइम जो हुक लाइन है इस गाने की, वो भी उसके ऊपर एक वीडियो कर दिया था। और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, पर जैसे मैंने कहा, मैं ट्राई करूंगी इस एल्बम प्ले करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 17 मिनट रह गए शो खत्म होने में, 6:43 हो रहे हैं। आप ट्यून इन है ऑन एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। एंड जो अगला गाना है प्ले करने वाली हूँ, राघव साचर की आवाज में ये गाना, एंड इसका भी एक वेरिएशन या वेरिएंट आप कह सकते हैं निकला है जस्ट रिसेंटली। जो मूवी है शाहिद कपूर एंड कृति सैनन की, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, यही वो गाना है और उसी के ऊपर मूवी का टाइटल है और जो टाइटल सॉन्ग है वो भी है। पर हम प्ले करने वाले हैं ओरिजिनल गाना इस आवर में, और उसके बाद सुनेंगे आप सुखवीर की आवाज में गाना। वो गाना कौन सा है ये आप गेस कर चुके होंगे, बट सुनने के लिए ट्यून इन रहना है आपको इसी रेडियो स्टेशन पर।

चिन्मय श्रीपदा, रॉनी रफेल एंड सत्य प्रेम की आवाज में आप सुन रहे थे ये वाला गाना। दिस इज रिक्वेस्टेड बाय वैदही और 7:16 हो रहे हैं। आप ट्यून इन ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर और हमारा शो शुरू हो चुका है हम तुम, जहां पर मैं प्ले करती हूं आपकी रिक्वेस्ट ऑन एयर। और जो अगला गाना है वो प्ले करने वाली हूं मैं। इस गाने को गाया है शफकत अमानत अली ने विद विशाल शेखर क्लिंटन सरेजो और इस गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम मनु और उनको सुनना था ये वाला गाना, तो हम ये प्ले करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी रावण। और अगर आपको भी आपकी पसंद के गाने सुनने हैं तो लेट मी नो ऑन 8657661071 और ऐसे गाने रिक्वेस्ट करें जो कि साल 2000 के बाद वाली मूवीज से

0: केके की आवाज में आप सुन रहे थे गैंगस्टर सी ए वाला गाना। इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी हमको फ्रॉम पंकज मोहोड़। और जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ इसकी रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम संजय दर्शन। पर उसके पहले आप सुनेंगे एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक और उसके बाद संजय दर्शन जी का जो गाना है जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो मैं प्ले करने वाली हूँ। एंड उस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने विद उदित नारायण फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगी। तो ये गाना हम उनके लिए प्ले करने वाले हैं। एंड अगर आपको भी आपके पसंद के गाने सुनने हैं यू हैव टू लेट मी नो ऑन 8657661071। और ऐसे गाने रिक्वेस्ट करें जो कि उन मूवीज से हो जो साल 2000 के बाद रिलीज हुई हो। और उसके पहले वाले जो भी मूवीज के गाने होंगे वो मैं प्ले नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ये है शो का थीम एट हम तुम। और जल्दी से जल्दी आपके गाने रिक्वेस्ट करें सो दैट वक्त कम मिले मुझे ज्यादा बात करने का और ज्यादा गाने प्ले करने का। सो फिलहाल तो जैसे मैंने कहा एक छोटा सा स्पॉट ब्रेक एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू बी लिसनिंग टू बैक सॉन्ग्स। और इसीलिए आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इसी रेडियो स्टेशन पर।
1: ध्यान धारणा योग साधना ही भारतीय संस्कृति ने जगाला दिलेली एक अनमोल देणगी आहे। हीच ध्यानधारणा जगभरातल्या विविध प्रकारच्या हिंसा थांबवण्यासाठी नेमकी दिशा देईल अशा ठाम विश्वासाने जगभरात कार्यरत असलेले केमिकल इंजिनिअरिंग, पेट्रोलियम इंजिनिअरिंग ते इनर इंजिनिअरिंग असा प्रवास अनुभवणारे मंदार आपटे आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आपल्याला भेटायला येत आहेत FM गोल्ड वाहिनीवर।
2: मेंटल हायजीनसाठी आपण काय करतो दर दिवशी? आपण काय करतो त्याला साधना म्हणू शकतो आपण। धन म्हणजे वेल्थ, साधना म्हणजे माझं वेल्थ जे कोणी चोरून घेऊ शकत नाही।
1: आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त विशेष संवाद जरूर ऐका। दिनांक 19 आणि 20 जून रोजी सकाळी 11 वाजता 100.1 MHz FM गोल्ड वाहिनीसह न्यूज ऑन AIR ॲपवरही।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।

0: मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

विशाल मिश्रा की आवाज में आप सुन रहे थे एनिमल सेवा लगाना। इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम फिरोज सिगनपुरिया। 7:50 हो रहे हैं, आप ट्यूनर हैं ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर और हमारा शो चल रहा है हम तुम, जहां पर सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। मेरा नाम है सोनम, मैं प्ले कर रही हूं आपकी रिक्वेस्ट ऑन एयर। जो अगला रिक्वेस्ट है वो आया है फ्रॉम विजेंद्र घटोल और इन्होंने अकोला से हमें मैसेज किया है। उनको सुनना है टैक्सी नंबर 9211 से, ये ट्रैक केके और सुनिधि चौहान की आवाज में। और आफ्टर दैट आप सुनने वाले हैं सोनू निगम, कुणाल गांजावाला, सुनिधि चौहान एंड ऋचा शर्मा की आवाज में काल मूवी से गाना। इस गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम पूजा। और बाकी जितने भी लोगों ने अभी मुझे मैसेज किया है, मीना जी है, दिलेश वंजारी है, देन देर इज रजनीकांत पाटिल, मैसेज आया है मुकेश कश्यप का, हमको मैसेज आया है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद भरत वर्मा का, राकेश माथुर, प्रमोद चिंचोलकर, हितेंद्र दास, दत्तात्रेय आदत, मेहर अरोरा, इतने सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। हो सकता है मैं आप लोगों के गाने प्ले ना कर पाऊँ, बट मे बी शायद नेक्स्ट वीक ऑन अ फ्राइडे आई विल बी एबल टू प्ले योर सॉन्ग्स। फिलहाल तो जैसे मैंने कहा ये दोनों गाने आप सुनने वाले हैं और अगर वक्त बचा तो फिर एक तीसरा गाना भी, बट वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। और साथ ही साथ मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपने

0: क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
0: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के

0: साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
1: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है।

0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Hae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई। प्रस्तुत है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिफ 2026 की विशेष रेडियो रिपोर्ट। 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के चौथे दिन देश विदेश के फिल्मकारों, कलाकारों और सिनेमा प्रेमियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। आज के इस विशेष अंक में हम आपको लेकर चलेंगे महोत्सव के विभिन्न स्क्रीनिंग स्थलों तक और सुनवाएंगे फिल्मकार और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं तथा जानेंगे आज प्रदर्शित हुई प्रमुख फिल्मों की विशेषताएं। तो आइए शुरू करते हैं मिफ 2026 की आज की झलकियों से। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर हम पहुंच चुके हैं और जहां तक हम बात करें ऑडी 1 और ऑडी 2 के बारे में, वहां के मैंने खूबसूरत रिसेप्शन पे दो खूबसूरत से आने वाले, मैं कह सकता हूं उन जोड़ी को देखा है जो शायद स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी कुछ सीखने के लिए यहां पर आए हैं। आपका नाम?
1: अपूर्व।
0: अपूर्व, अपूर्व आप पहले दिन से यहां पर हैं, 15th से?
1: जी सर।
0: और आप 15, 16, 17, आज 19 हो गई और ये 19 थी मिफ का फेस्टिवल है, तो आपको क्या लग रहा है कि चार दिनों में आपने क्या चीज़ देखी है?
1: सर, अलग अलग स्क्रीनिंग्स थे नेशनल कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के, तो वो सब देखे है। एंड देन भाई सब ऑडी 1 ऑडी 2 में जो भी चलता है, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशंस।
0: और व्हाट्स योर गुड नेम?
2: आन्या शाह।
0: हाय आन्या, आपने बताया कि आप एनिमेशन की स्टूडेंट हैं, तो आपने भी एनिमेशन के अभी तक कोई फिल्म देखी है इसमें?
2: हाँ, मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी।
0: तो आपने जो भी फिल्म्स देखी, आपकी फेवरेट फिल्म्स में से कौन सी है?
2: अभी तक देसी उन है एंड दूसरा है द गुड शटल।
0: जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे?
1: फिल्म फेस्टिवल आओ, देखो, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ करने मिलता है, बहुत लोगों से बात करने मिलता है, तो एक दुनिया की भी समझ आती है। तो कम योर सेलिब्रेट विद अस द फिल्म फेस्टिवल।
0: सो दोस्तों, जैसे बात चल रही थी झलकियों की, मिफ के अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत सी झांकियाँ हैं और इन खूबसूरत झांकियों के बीच में बड़ी प्यारी प्यारी सी स्टॉल्स भी हैं, चाहे वो रिबॉन इंडिया फिल्म की बात करो, चाहे आप बात करो NDRs वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, LTM के बारे में, या फिर NFDC सिनेमा ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए आज जानते हैं कुछ खास। अगर आपने आज से पहले कभी भी कोई फिल्म जो है NFDC के अंतर्गत नहीं देखी है, कोई शॉर्ट फिल्म नहीं देखी, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, या देखी भी है और फिर से

0: देखना चाहते हैं या फिर आपने मिस कर दिए, तो वो क्या तरीका है जो शायद आप घर बैठे ईजाद कर पाएं। मेरे सामने एनएफडीसी से ही एक हैं, आपका नाम जान सकता हूं मैं?
1: अयाना इब्राहिम।
0: जितना अच्छा आपका नाम है मेरे ख्याल से उतना अच्छा आपका स्टॉल है ये, तो प्लीज़ मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। जो लोग एनएफडीसी की फिल्में देखना चाहते हैं, आपने मुझे बताया कि 9000 यानी कि 9000 से ज़्यादा फिल्में जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरीके से वो लोग इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं?
1: हाँ जी, ये स्टॉल पे हम सिर्फ हार्ड कॉपी नहीं पर सॉफ्ट कॉपी भी बेच सकते हैं। तो जो भी हमने डिस्प्ले किया है इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिस्क हैं, तो हर एक डिस्क 300 की है और सॉफ्ट कॉपी 100 की है। एक कैटलॉग है जिसका QR कोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो कैटलॉग में पूरे 9000 फिल्म्स की डिस्क्रिप्शन है, उनके टाइटल्स हैं, उनके डायरेक्टर्स के नाम हैं, तो वो सारे 9000 फिल्म्स की सॉफ्ट कॉपी भी मिल सकती है और फिर वो देख सकते हैं आराम से।
0: NFDC के स्टॉल से जुड़ा हुआ है एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल। अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं तो पब्लिकेशंस डिवीजन, प्रकाशन विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक किताब घर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंदर है। और इसमें किस तरह की किताबें हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं।
2: सर आपका नाम?
3: मनोज मोकाशी।
0: मनोज सर बताइए, इसमें जो किताबें हैं उनके बारे में कि किस तरह की किताबें हैं और अभी तक आज चौथा दिन है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रह रहा है जितने लोग आए हैं
3: यहाँ पे? तो सब फिल्म के बारे में भी है, एपटाई करके वृत्तचित्र लेखन करके भी है, अलग अलग टाइटल की किताबें हैं यहाँ पे, या ऐसे भी है, अभी दूसरे भी है कि जनरल नॉलेज के भी है, हिस्ट्री बुक्स है, काफ़ी सारे बुक्स है, योजना करके है, कुरुक्षेत्र है, भारत करके है, जनरल नॉलेज है उसमें, जो एग्जाम के रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर भी है।
0: दोस्तों मिफ के अंदर एंटर करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे वेब बाज़ार है, वो वेब बाज़ार जिसने 2024 के अंदर अपना पहला कदम रखा, और जितने भी अपकमिंग फिल्मकार हैं जो पहली बार फिल्म बना रहे हैं उनको एक ऐसा ज़रिया दिया जिससे वो अपनी फिल्मों को कमर्शली लोगों तक पहुँचा सकें। मैं अगर बात करूं नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, मैं बात करूं भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय जो बिल्कुल ऑडी 1 और ऑडी 2 के बाहर है, वहां से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हर तरफ लगी हुई हैं, जितने भी हमारे वर्ल्ड सिनेमा के लेजेंड्स हैं उन सब की, मैं बात करूँ रेखा जी की, या मैं बात करूँ दिलीप कुमार साहब की, या फिर AR रहमान साहब की, तस्वीरों से घिरा हुआ ये पूरा जो है मामला कुछ ऐसा है कि अगर आँखें आवाज़ों की भी होती तो शायद इन आवाज़ों का पहचान पाते। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें ये याद दिलाती हैं कि सिनेमा कितना पुराना है, लेकिन पुराना होने के साथ साथ वो आज भी वक्त के साथ तरोताज़ा होता जा रहा है, क्योंकि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के अंदर इस तरह की पोशाकें तस्वीरों में जो दिखाई देती हैं वो ऑडी 1 और ऑडी 2 के अंदर चलचित्र के रूप में हमें रंग रूप के साथ आज देखने को मिलती हैं। आज ऑडी 1 और ऑडी 2 में एक से बढ़कर एक, मैं ये कहूँगा सिर्फ फिल्म हस्ती नहीं, ऐसे कलाकार आ रहे हैं जिन्हें हमने सिर्फ छोटे पर्दे पर ही नहीं बड़े पर्दे पर भी देखा और बहुत कुछ सीखा है उनसे। और एक बहुत ही खूबसूरत सी हस्ती इस वक्त मेरे समक्ष खड़ी हुई है, उनका नाम मैं बताते बताते घबरा रहा हूँ कि कहीं मेरी जबान ना लड़खड़ा जाए, क्योंकि ऐसा उन्होंने काम किया है, ऐसा उन्होंने नाम बनाया है कि शायद उनकी आवाज़ उनकी पहचान बन चुकी है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाज़ के ज़रिए आप एक बार उनका नाम पहचानिए। मैं पहले सिर्फ अभिनंदन कर दीजिए हमारे इतने भी लिसनर्स हैं उनका।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आकाशवाणी पे मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: देखिए ये आवाज़ हम सभी जानते हैं रेणुका शाहणे जी की है, मैं कहूँगा सर्कस से उनकी जर्नी शुरू हुई है, सुरभि से उनकी जर्नी शुरू हुई है, छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर हर तरफ उन्होंने एक अलग ही मुकाम जो है बनाया है। मैं बात करूँ उनकी हम आपके हैं कौन की, या फिर उनके निर्देशन है बनी फिल्म रीता की। मैम आप एक एक्ट्रेस भी हैं, निर्देशन में भी रही हैं, और फिल्मी जगत से मैं कहूँगा कि बहुत लंबा आपका जो है नाता रहा है, आज आपने बहुत खूबसूरत फिल्में भी देखी हैं यहाँ पर, तो आपने जो फिल्में देखी हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
4: जो फिल्में मैंने आज देखी है वो बहुत विविध प्रकार की फिल्में थी, जिनका विषय अलग अलग था, भाषाएँ अलग अलग थी, और मुझे लगता है कि एकदम स्टूडेंट फिल्म से लेकर थोड़े से जो प्रस्थापित मेकर्स हैं उनकी भी फिल्में देखने का मौका मिला आज, और इतना मुझे अच्छा लगा ये राष्ट्रीय जो नेशनल लेवल का कंपटीशन है शॉर्ट फिल्म्स का, उनके मैंने 5-6 फिल्में देखी आज और मुझे बहुत अच्छी लगी। और कल तो मेरी फिल्म खुद की एनिमेशन शॉर्ट दिखाई जाने वाली है, जो मेरे लिए एक बहुत प्रेस्टीज का एक मामला है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट.
0: मैम, उस फिल्म का नाम?
4: लूप लाइन नाम की एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो एनिमेशन कॉम्पिटिशन है उसका सिलेक्शन उसके लिए हुआ है.

0: मैम जैसे आपने अभी इस बारे में बताया, देखिए मैंने आपसे कहा था आखिरी सवाल, लेकिन आपकी फिल्म सुनने के बाद में मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि देखिए एआई के बाज़ार भी अब जो है मार्केट में आ चुके हैं, आप एनिमेशन फिल्म के अब क्रिएटर ही बन चुके हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं?
1: मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ आप एआई का उपयोग मनुष्यों को निकाल के ना करें, अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग ज़रूर करें, और एक मशीन के द्वारा तो हम करते ही हैं, कैमरा भी एक मशीन ही है, उसके बिना हम फिल्म नहीं बना सकते, लेकिन AI वर्सेस ह्यूमन बीइंग्स नहीं होना चाहिए।
0: तो दोस्तों जिस तरह से हम बात करें भारतीय सिनेमा की और भारतीय सिनेमा के साथ साथ वर्ल्ड क्लास सिनेमा की, तो इस सिनेमा के अंदर जितने भी चेहरे हम देखते हैं वो चेहरे हम हकीकत में अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करते हैं जब हमारी जिंदगी भारतीय हिंदी फिल्म जगत सिनेमा की। और आज 2026 में 19वां संस्करण चल रहा है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का, जहां पर अलग अलग तरह की फिल्में ऑडी 1 और ऑडी 2 में, साथ में JB हॉल और RR3 में दिखाई जा रही हैं। ऑडी 1 की बात करूं या ऑडी 2 की बात करूं, यहां पर इसके साथ में JB हॉल से भी और RR3 से भी एक से बढ़कर एक फिल्म सितारे जो हैं इस वक्त रेड कारपेट से होते हुए मुझे हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, और इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा चेहरा मेरे समक्ष इस वक्त खड़ा हुआ है, और वो है शीना चौहान जी का। जो शीना चौहान है वो अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं और बहुत ही लंबे अरसे से जो है मानव अधिकार के साथ भी जुड़ी हुई हैं। आपने अभी देखा होगा डॉग्स वेब बाजार के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नए लोग जो हैं फिल्में लेकर आए हैं और उन्हें फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है?
2: मुझे ऐसे लगता है कि जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं वो 5 डेज में हमें 100 कंट्रीज ट्रैवल कराते हैं और 1000 आँखों से हमें दुनिया दिखाते हैं, एक ही विजन लेके, जो एक ही माइंड में एक ही पर्पस लेके, वो है कि हमारे दिमाग को, हमारे दिल को खोलना और हमें एक्सपीरियंस करवाना चीज़ों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है हमें करना चाहिए। तो जितना हम दिल से खुलेंगे, लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, उतना हम एक्सपैंड होंगे, उतना हमारी एवोल्यूशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आज डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, एनिमेशंस, पैनल्स, डिस्कशंस, ये चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: दोस्तों जब हम बात करें हमारे देश के अलग अलग कोनों की, तो बड़ौदा से एक बड़ी ही खूबसूरत सी टीम इस वक्त मेरे साथ में है, और इस मिफ के बाजार में क्या देखने आई है, क्या खरीदने आई है, चलिए जानते हैं उनसे। आपका नाम जान सकता हूँ मैं?
3: अर्पिता।
0: अर्पिता, आपकी टीम आपके साथ में, आपके दोस्त आपके साथ में, तो आप बताइए कहाँ से आए हैं आप?
3: हम सब बड़ौदा से आए, वी आर फ्रॉम द फिल्म स्कूल, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वहाँ पे हम फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन पढ़ते हैं, एंड वी आर ऑल फॉर द फिल्म फेस्टिवल हियर।
0: और जैसे आप अभी यहाँ पर आए हैं, आज आपका फर्स्ट डे है सबका?
3: नहीं नहीं, हमको 3 दिन हो गया है, एंड टुडे इज आवर लास्ट डे, लाइक वी बीइंग हियर।
0: इन 3 दिनों का एक्सपीरियंस आप बताइए 2 लाइन में, अगर ऐसा हो सकता है तो।
3: आई मीन इट वॉज अ लाइक ग्रेट एक्सपोजर, हमको पता चला डिफरेंट, लाइक इंडिया की फिल्म तो हम देखते हैं सब, बट बाहर की फिल्म, बाहर की लैंग्वेज, द ब्यूटी ऑफ लाइक इंडिया। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्री ऐसी थी कि हमको पता भी नहीं था कि वो शहर एग्जिस्ट भी करता है, तो वी गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर पर्सनली भी, हाउ अ फिल्म इज मेकिंग, और प्रोफेशनली इंडस्ट्री कैसा चल रहा है।
0: अब वक्त आ चुका है एक और खूबसूरत सी फिल्म के बारे में बात करने का, जो है अभिव्यंजना, और उसके डायरेक्टर हैं सुबोध आनंद जी, जो इस वक्त मेरे साथ ही हैं। सुबोध जी, इस फिल्म के बारे में आप कुछ बताइएगा।
4: फिल्म का एक मेन उद्देश्य यह है कि एक कलाकार जब रेखा करता है, कैनवास में कुछ ड्राइंग्स बनाता है, अपने कला के माध्यम से अपनी कहानी को दर्शक को दिखाता है, तो मेरा मानना यह है कि कैनवास जैसा है पेंटिंग का, वैसा फिल्म भी एक कैनवास है, जो मैंने कलर के साथ अपने फिल्म को दिखाया है दर्शक को। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जाति भेद, समानता, क्योंकि भारत में जितनी भी कला है, नृत्य हो, संगीत हो, वैसी गांव में आप जाओगे तो रोड साइड एक नृत्य रहता है जिसको उतना वैल्यू नहीं मिल पाती है, तो उसी को हमने इसमें दिखाया है, और हमने दिखाया है कि सारी कला एक होती है, उसमें कोई जात नहीं होती है, ये मेरा फिल्म का कॉन्सेप्ट है सर।
0: तो दोस्तों अभी हमारे साथ में एक खूबसूरत सी फिल्म के डायरेक्टर और हैं, कमलेश के मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्म जो है वो जो है आज चली है, और उसके साथ में आप नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी रहे हैं, मिफ को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं?
5: ये देश का प्रीमियम फिल्म फेस्टिवल है डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ देश भर के फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्म शोकेस करने का मौका मिलता है, और सबसे अच्छी बात कि कंपटीशन और नॉन कंपटीशन सेक्शन भी है, जहां आप अपनी फिल्म को उस रूप में ले करके प्रेजेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं, और अप्रिशिएशन

0: पा सकते हैं जो आपने फिल्म बनाते हुए जो कल्पना की होती है।
1: महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का भी विशेष आकर्षण रहा। RR3 में जर्मनी, फ्रांस, ईरान, सिंगापुर और स्लोवेनिया सहित कई देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त फिल्म स्कूल संस्करण के अंतर्गत युवा फिल्मकारों की रचनात्मक प्रस्तुतियों को भी दर्शकों ने सराहा। युवा फिल्मकारों के लिए आयोजित इमर्जिंग वॉइसेस फिल्म स्कूल एडिशन खंड विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। तो ये थी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि MIFF 2026 के चौथे दिन की विशेष रेडियो रिपोर्ट। कल फिर मिलेंगे महोत्सव की नई झलकियों, विशेष बातचीतों और रोचक प्रस्तुतियों के साथ। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। और टीम में हमारे साथ थे टेक्निकल सपोर्ट में कल्याण जी, प्रोडक्शन टीम में गुरुनाथ तेरवांकर, रोशन जाधव और प्रोड्यूसर राजकुमार भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल ईयर से आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। अब वक्त हो गया है गजलों के खास कार्यक्रम का, जिसका नाम है रंगे महफिल। और आज रंगे महफिल के साथ स्टूडियो में हाजिर है आपका अपना प्रवीण शर्मा। तो कबूल फरमाइए मेरा प्यार भरा आदाब।

सोनी सोनी थी फिजा, सोनी सोनी थी फिजा, मैंने यूं ही उसके बालों में गुथी खामोशियों को छू लिया। वो मुड़ी, थोड़ा हंसी, मैं भी हंसा। फिर हमारे साथ नदियां, वादियां, कोहसार, बादल, फूल, कोपल, शहर, जंगल, सबके सब हंसने लगे। एक मोहल्ले में किसी घर के किसी कोने की छोटी सी हंसी ने दूर तक फैली हुई दुनिया को रोशन कर दिया है। जिंदगी में जिंदगी का रंग फिर से भर दिया है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6 दिल से दिल तक।

दोस्तों, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस वक्त रंगे महफिल की खूबसूरत महफिल में अपने दोस्त प्रवीण के साथ और सुन रहे हैं गजलें। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये गजलें पसंद आ रही होंगी। वैसे दोस्तों, जब अपने हमदम के नजदीक होते हैं ना, तो वो पल हमारी जिंदगी के सबसे खास पल बन जाते हैं, सबसे खास। उनके पहलू में बैठकर हम दुनिया की सारी बोझिल बातों को भूल जाते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि भूल जाना चाहते हैं। सारे गम मानो काफूर हो जाते हैं और हम उन खूबसूरत लम्हों को अपनी नजरों में कैद कर लेना चाहते हैं।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
2: कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है, कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है, गजल की शाख पे एक फूल खिलने वाला है, गजब की धूप है एक बेलिबास पत्थर पर, पहाड़ पर तेरी बरसात का दुशाला है।

0: 리보리구구구구구구구구구구구구구구구
1: 아이하이
0: 띠리띠리지나자루메해자두
1: 아레베소레가네켜순아래요무제
0: 아니또마리페이브릿가네또메순아래요지세가가카툼네메라릴지다다
1: 아레에시바테또페라아프니리퀘스트아카슈와니레인보퍼베즈도अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर एक बजे से दो बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल

वेलकम बैक फ्रेंड्स, सुबह पुनः आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल ईयर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। आप हैं इस वक्त रंगे महफिल की खूबसूरत और खुशगवार महफिल में अपने दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ, और लुत्फ उठा रहे हैं खूबसूरत गजलों का।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
6: यूं तो हर रिश्ते का अंजाम यही होता है, यूं तो हर रिश्ते का अंजाम यही होता है, फूल खिलता है, महकता है, बिखर जाता है। तुमसे वैसे तो नहीं कोई शिकायत, लेकिन शाख और सब्ज तो हसास फजा होती है, हर कली जख्म की सूरत ही जुदा होती है। तुमने बेकार ही मौसम को सताया, वरना फूल जब खिल के महक जाता है, खुद ब खुद शाख से गिर जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, हम अपने महबूब के दीदार के ख्वाहिशमंद होते हैं। ज़िंदगी में हमें सुकून के पल तभी मैसर होते हैं जब हमें हकीकत में अपने महबूब के दीदार हो जाते हैं। दोस्तों, उनसे मुलाकात होने पर हम उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं और उनकी हुस्न की तुलना चांद तक से कर देते हैं। और शायद फिर ये भी कहते हैं कि

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, किसी की आंख में रहकर संवर गए होते। गजल ने बहते हुए फूल चुन लिए, वरना गमों में डूब के हम लोग मर गए होते।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए

0: प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी और सत्यापन तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्विता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्विता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: 12:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लवर्स फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें लता मंगेशकर और अमित कुमार की है। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: और दोस्तों, आप जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म रॉकी से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: और अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और तोशी राणा की आवाजों में शोर इन द सिटी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

0: रियल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: 12:30 होने को है दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीरो आर शो मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म शोबिस से, आवाजें शान और श्रेया घोषाल की।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए

0: भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: हम किसी से कम नहीं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शुक्रिया। ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुनेंगे और आवाज दी है सोनू निगम ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन।
1: पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत, आवाज किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन

अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के विषय में बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 1:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भाजपा सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दूनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झार सुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है।

न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्ड शायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के आने की आशंका के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4थे स्थान पर है। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वे अपने सीजन के पहले इवेंट में 4थे स्थान पर रहे। श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रमेश थरंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। जारी है कार्यक्रम सारे कामा।